0: एक कुड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: ये मेरे फंस गई।
0: एक कुड़ी फंस गई।
1: अरे ये क्या कह रहे हो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था।
2: अरे

0: रेडियो सुनो 91.7 FM, कतर्स फेवरेट रेडियो स्टेशन।
1: आज प्यार की होड़ी
2: दिल बोले तो
3: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
3: ओहो
1: दोनों डील कर सी